0: पेंसिल पैक किन ली के
1: जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी तो 20% फन कैश फिर तक एंसिल ऐप में क्लेम करी
2: कैश फिर तक ले ली के कैश फिर तक ले ली के
1: एंसिल पैक किन ली के शर्त लागू हुई एंसिल नेपाल के लग।

0: प्रकार को रसायन केमिकल नमिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्यश्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्यश्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन
1: युनाइटेड अस्पताल बाढ़गंगा साथ ठाकुरापुर कपिल वस्तु में बिरामी का लागी थप नया सुविधा
2: कंसल्टेंट फिजिशियन डाक्टर गोविंद रावत छाती तथा श्वास प्रश्वास संबंधी समस्या मुटु रोग मृगौला रोग पेट र आंद्रा को समस्या कलेजो थायराइड र मधुमेह सहित का रोग को पूर्ण परामर्श र उपचार
1: हाड़ जोड़नी नसा तथा बाथ रोग विशेषज्ञ डाक्टर समीर खान द्वारा हाड़ जोड़नी संबंधी समस्या हड्डी ढाँचिएको रडहरु राख्ने निकाल्ने नसा च्यापिएको लगायत बाथ रोग विशेषज्ञ सेवा बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन परामर्श तथा उपचार सेवा उपलब्ध छ
3: वरिष्ठ जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर सन्तोष पौडेलद्वारा यस युनाइटेड अस्पतालमा विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा तथा परामर्श सेवा उपलब्ध रहेको छ पित्त थैलीमा पत्थरी हर्निया एपेन्डिक्स आदिको दूरबीन प्रविधि द्वारा अपरेशन स्तनमा गाँठागुठी फोका घाउ पाइल्स तथा अन्य शल्यक्रिया सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म विशेषज्ञ डाक्टरसँग परामर्श तथा आवश्यक उपचार सेवा लिन सक्नुहुनेछ
4: वरिष्ठ प्रसूति तथा महिला रोग विशेषज्ञ ल्याप्रोस्कोपी सर्जन डाक्टर सन्देश आचार्य द्वारा गर्भवती महिला को नियमित जाँच डेलिभरी तथा शल्यक्रिया पाठ्यक्रम सम्बन्धी सम्पूर्ण शल्यक्रिया दूरबीन प्रविधि द्वारा अपरेशन परिवार नियोजन तथा बन्ध्याकरण सेवा महिनावारी गडबडी सदोपेट दुख्ने तथा फोहोर पानी बग्ने समस्या को उपचार बाजोपन पाठ्यघर को क्यान्सर को जाँच तथा परामर्श
1: वरिष्ठ एनोस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर सुमन श्रेष्ठ द्वारा क्रिटिकल केयर परामर्श तथा उपचार सेवा
3: अन्य ओपीडी सेवा शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म सुन्नुहोस् त मेडिकल अफिसर डाक्टर योगेन्द्र थापा र डाक्टर रोशन कुमार यादव द्वारा 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा उपलब्ध छ
2: युनाइटेड अस्पताल बाढगंगा 4 ठाकुरापुर कपिल वस्तु सम्पर्क 076-550-200 मोबाइल नम्बर 98-570-55-138
1: अब ढुक्क हुनुहोस् विशेषज्ञ डाक्टर को सल्लाह लिनुहोस् युनाइटेड अस्पतालमै
5: खुसीको खबर विगत 4 दशकदेखि बुटवलमा निरन्तर सेवा दिँदै आइरहेको आले डेन्टल अब कपिलवस्तुको 4 नम्बर जितपुरमा यही श्रावण 4 गतेदेखि शुभारम्भ भई सञ्चालनमा आइरहेको छ
6: शुभारम्भको अवसरमा विशेष छुट थप जानकारीका लागि आले डेन्टल बाढगंगा 1 जितपुर कपिलवस्तु एभरेस्ट बैंक नजिकै

0: एंसल पैक किन लिए जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी तो 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
1: कैश फिर तक ले लिए कैश फिर तक ले लिए
0: एंसल पैक किन लिए सर लागू हुई एंसल नेपाल के लग।

0: शान्ति र विकासको आधार सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz।
1: आइए बहिनी, आज रक्षा बन्धन है, रुसल का लीजिए, रखिए नहीं बांधने की।
2: बांधबे न आए, लेकिन पहले एगो हमर बात माने पड़तो।
1: की बोल ने।
2: हाँ तो चल ले हो।

ए माई भैया अभी लेना आये। अरे बेटी भैया तहा डॉक्टरी में लोग के सेवा करत हुई, बस जल्दी ही आ जाई, जाके तू थाली सजावा।

0: अरे कोको कोला तो मिलवे किया है, अब 5,000 रुपया एगो साड़ियों न मिला है।
1: अरे बेटी कहाँ पहुँच लू, अभी ले तू ऐलू ना?
2: तो चिंता मत करो माई, हम बस 5 मिनट में पहुँच ही वाला बानी।
1: ए अंकुश, ए राजा, अरे सुनो तानी जी, बेटी बस 5 मिनट में पहुँच ही वाला बड़ी।
3: आज हमार लक्ष्मी आ रहा बड़ी।
4: हाँ पापा।

0: अरे ए बेटी, पहले पानी वानी पी अबो।
1: ना माई, पहले राखी बनाई। हाँ माई, पहले राखी बनाई।
0: तोहन लोग के अभी लड़कपन गयल ना, अब खुशी ससुरैती भइली।
2: का माई, बना दे लेनु गैर।
1: अरे छोड़ा ना दीदी, तू तो माई के जानते बाड़ू, आओ पहले राखी बना।

0: अनि त्यसपछि के भयो त बाबा?
1: त्यसपछि के भयो फेरि पछि भनौला है बालक।
2: बोलिए कैलाश पति शिव पार्वती की, बोलिए बम्बई जाने रे।

सम्पर्क लुम्बिनी हस्पिटल एन्ड टेक्निकल कलेज प्रणाली बुटवल छ। साबिक लुम्बिनी नर्सिङ होम प्रणाली। फोन 071-531-641 र 535-641।

0: पेंसिल पैक किन लीजिए जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी वो 20% कम कैश फिर तक एंसिल ऐप में क्लेम करी
1: कैश फिर तक ले लीजिए कैश फिर तक ले लीजिए
0: एंसिल पैक किन लीजिए शर्त लागू हुई एंसिल नेपाल के लग।

0: रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz मा सुन्न नभुल्नु होला।
1: यति बेला साँझको 7 बज्यो।

कई प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन

0: अच्छे जीवन जीना जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: चांदी का आकर्षक डिजाइन का गरगहना किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब तपाईको रोजाईको पहिलो